0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। अमरीकी हुकूमत ने कहा है कि इसराइल और लबनान ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है, ताहम ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने एक ताज़ा इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि जब तक इसराइली अफवाज खित्ते से वापस नहीं जाती तब तक अमन कायम नहीं हो सकता। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने जुमेरात को इस बयान की खबर दी। IRGC ने कहा कि इसराइल अपने हमले हर सूरत बंद करे और लबनान के मकबूजा इलाके खाली कर दे। ईरानी हिमायत याफ्ता शिया मुस्लिम ग्रुप हिजबुल्ला के रहनुमा नईम कासिम ने जंगबंदी पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जब तक कब्जा जारी रहेगा मुज़ाहमत जारी रहेगी, और उन्होंने लबनानी हुक्काम पर जोर दिया कि वो इसराइल के साथ मुज़ाकरात ना करें। इस ग्रुप ने जुमेरात को एक और हमला करने का दावा भी किया है। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कार्ट्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का अहद किया है और कहा है कि फौजें जनूबी लबनान में मौजूद रहेंगी। लबनानी टेलीविज़न ने बुध के रोज़ ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची का इंटरव्यू नशर किया है। उन्होंने कहा कि तेहरान अब भी वाशिंगटन के साथ बातचीत में मसरूफ़ है। उन्होंने जोर दिया कि अमन माहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर लड़ाई का खात्मा शामिल होना चाहिए। एक जापानी पब्लिक प्राइवेट काउंसिल ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले तवील फासले के ट्रक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तामीर की पॉलिसी का ऐलान किया है। इस नौ तश्कील शुदा काउंसिल ने जुमेरात को अपने पहले इजलास में इस मंसूबे की नकाब कुशाई की। इसके मेंबरान सनद ट्रांसपोर्ट और माहौलियात की वजारतों और गाड़ी साज व मालियाती इदारों जैसे वसी शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो शिमाल मशरक में फुकुशिमा और जुनूब मगरब में फुकुओका प्रिफेक्चरों के दरमियान 1300 किलोमीटर तवील ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। इसमें कार्बन फ्री हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल सेल गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। शरीक कंपनियां हुकूमत की सब्सिडी के साथ अगले 10 सालों में एक्सप्रेसवेज और दीगर अहम सड़कों के साथ 30 इजाफी हाइड्रोजन स्टेशन बनाएंगी। मंसूबे में तकरीबन 1500 फ्यूल सेल ट्रक इस्तेमाल किए जाएंगे। मगरबी जापान के हिमेजी शहर के एक चिड़ियाघर में बच्चों को हिप्पो के दांतों की सफाई देखने का एक अनोखा मौका फराहम किया गया। ये तकरीब 4 जून को शुरू होने वाली दांतों और मुंह की सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक हफ्ते पर मोहित सालाना कौमी मुहिम का हिस्सा थी। तकरीबन 30 मकामी नर्सरी स्कूल के बच्चों ने हिमेजी सिटी चिड़ियाघर में जुमेरात को एक मादा हिप्पो किबोको के दांतों की सफाई का अमल देखा। ये जानवर 42 साल का है और इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर है। सबसे पहले एक डेंटल हाइजीनिस्ट ने वजाहत की कि डोनट्स और चॉकलेट जैसी मिठाइयाँ आसानी से दांतों में कैविटी पैदा कर सकती हैं, और उन्होंने दांतों को दुरुस्त तरीके से ब्रश करने का तरीका दिखाया। बच्चों ने फिर हिप्पो को उसकी पसंदीदा खुराक सेब और गाजरें खिलाईं। खाने के बाद एक रखवाले ने 1 मीटर से ज़्यादा लंबे खसूसी टूथब्रश का इस्तेमाल करते हुए जानवर के दांतों की सफाई का अमल शुरू किया। हिप्पो का मुंह खुलने और उसके दांतों की सफाई के दौरान बच्चे उसे दिलचस्पी से देखते रहे।
1: और सामिन, आखिर में अहम खबर का खुलासा। जापान की वजारत सनत का कहना है कि मुल्क में तवानाई की मुस्तहकम फराहमी यकीनी बनाने में मदद के लिए 2040 की दहाई तक 5 पुराने जौहरी रिएक्टर्स को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 5 जून शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कवानो से सुने समाचार। जापान के उद्योग मंत्रालय का कहना है कि ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश को 2040 के दशक तक 5 पुराने परमाणु रिएक्टरों का पुनर्निर्माण करना होगा। अर्थ, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा नीति विशेषज्ञों की एक समिति बैठक आयोजित की, जिसमें एक नया प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में ये माना गया है कि वित्त वर्ष 2040 में देश के विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 20% होगा। इसमें कहा गया है कि 60 वर्ष की संचालन अवधि पूरी करने वाले रिएक्टरों को बंद करने के बाद योगदान का ये स्तर कायम रखने के लिए 2040 के दशक तक 2 से 5 परमाणु रिएक्टरों और 2050 के दशक तक 11 से 14 रिएक्टरों का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। नए परमाणु रिएक्टर बनाने में लंबा समय लगेगा, जबकि जनरेटिव AI के बढ़ते इस्तेमाल और अन्य कारकों के चलते बिजली की मांग में वृद्धि की आशंका है। ऐसा लगता है कि प्रस्तावित समय सीमा का उद्देश्य बिजली कंपनियों के अनुमान को बेहतर बनाना, निवेश को सुगम बनाना और मानव संसाधन का विकास करना है। अमेरिका की जेनेसिस मिशन नामक राष्ट्रीय परियोजना में जापान शामिल होगा। इस परियोजना का उद्देश्य AI और सुपर कंप्यूटरों से वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को गति देना है। इस परियोजना में जापान पहला अंतर्राष्ट्रीय भागीदार होगा। अमेरिका और जापान इस परियोजना में 5 वर्षों में 50-50 करोड़ डॉलर का निवेश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पिछले साल नवंबर में इस परियोजना की शुरुआत की थी। अमेरिका के ऊर्जा मंत्रालय, जापान के शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित अर्थ, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के प्रतिभागियों ने बृहस्पतिवार को वॉशिंगटन में ऊर्जा मंत्रालय में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और जापान के रिकेन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मटीरियल साइंस सहित प्रमुख अनुसंधान संस्थान क्वांटम सूचना विज्ञान, संलयन ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रगति के लिए अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देंगे। NHK द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार जापान के 47 में से कम 9 प्रीफेक्चरों में अप्रैल से लेकर इस बृहस्पतिवार दोपहर तक भालू हमलों में 25 लोग हताहत हुए। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 4 लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को पूर्वोत्तर जापान के आकिता शहर में अपने घर के पास एक पहाड़ी जंगल में 73 वर्षीय महिला मृत पाई गई। शव की हालत और उसकी जांच के आधार पर अधिकारियों का निष्कर्ष है कि वो भालू हमले का शिकार हुई। मंत्रालय लोगों से आग्रह कर रहा है कि वे रेडियो या घंटियां साथ रखें ताकि भालुओं को डराया जा सके और समूह में ही बाहर जाएं। मंत्रालय का यह भी कहना है कि कम दृश्यता वाले क्षेत्रों में जानबूझकर तेज आवाज करें और खाने पीने की चीजें ना फेंकें, क्योंकि इससे भालू आकर्षित हो सकते हैं। मंत्रालय ने लोगों से स्थानीय सरकार की ओर से जारी की जाने वाली भालू दिखाई देने संबंधी ताज़ा जानकारी पर भी नज़र रखने को कहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अमेरिका सरकार का कहना है कि इसराइल और लेबनान संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं, हालांकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जब तक इजरायली सेना लेबनान से पीछे नहीं हटती तब तक शांति संभव नहीं है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बृहस्पतिवार को ये खबर दी। रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अनुसार इसराइल को अपने हमले रोकने होंगे और लेबनान में कब्जाए गए इलाकों से पीछे हटना होगा। ईरान समर्थित शिया मुस्लिम गुट हिजबुल्ला के नेता नईम कासिम ने संघर्ष विराम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब तक कब्जा जारी रहेगा प्रतिरोध भी जारी रहेगा। उन्होंने लेबनानी अधिकारियों से इसराइल के साथ बातचीत न करने का आग्रह किया। गुट ने बृहस्पतिवार को एक और हमले को अंजाम देने का भी दावा किया है। उधर इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्स ने हिजबुल्ला के खिलाफ अभियान जारी रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सैनिक दक्षिणी लेबनान में बने रहेंगे। लेबनान के टेलीविजन ने बुधवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ एक साक्षात्कार प्रसारित किया। अराक्ची ने कहा कि ईरान अब भी अमरीका के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि शांति समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म करने की बात शामिल होनी चाहिए। जापान की एक सरकारी व निजी परिषद ने लंबी दूरी के ट्रक परिवहन नेटवर्क योजना की घोषणा की है, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले वाहन चलाए जाएंगे। इस नवगठित परिषद ने बृहस्पतिवार को पहली बैठक में योजना का अनावरण किया। परिषद के सदस्य उद्योग, परिवहन और पर्यावरण मंत्रालयों सहित वाहन निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। वे देश के पूर्वोत्तर में फुकुशिमा और दक्षिण पश्चिम में फुकुओका प्रीफेक्चरों के बीच 1,300 किलोमीटर लंबे परिवहन नेटवर्क की योजना बना रहे हैं। इसमें कार्बन मुक्त हाइड्रोजन चालित फ्यूल सेल वाहनों का उपयोग किया जाएगा। प्रतिभागी कंपनियां सरकारी सब्सिडी से अगले 10 वर्षों में एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे 30 अतिरिक्त हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित करेंगी। इस परियोजना में लगभग 1,500 फ्यूल सेल ट्रक चलाए जाएंगे। पश्चिमी जापान में हिमेजी शहर के एक चिड़ियाघर में बच्चों को एक दरियाई घोड़े के दांत साफ होते देखने का अनूठा अवसर मिला। दंत व मुख स्वास्थ्य से जुड़ा ये आयोजन 4 जून से आरंभ एक सप्ताह के वार्षिक राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा था। बृहस्पतिवार को हिमेजी शहर के चिड़ियाघर में आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग 30 स्थानीय बच्चे शामिल हुए, जहां उन्होंने खिबोको नामक मादा दरियाई घोड़े के दांत साफ होते देखे। 42 साल के इस दरियाई घोड़े की लंबाई लगभग 2.5 मीटर है। सबसे पहले एक दंत स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने समझाया कि डोनट्स और चॉकलेट जैसी मिठाइयां आसानी से दांत में कीड़े का कारण बन सकती हैं। उन्होंने दांत ठीक से ब्रश करने का तरीका भी दिखाया। इसके बाद बच्चों ने दरियाई घोड़े को उसका पसंदीदा भोजन सेब और गाजर खिलाए। भोजन के बाद चिड़ियाघर के एक कर्मचारी ने 1 मीटर से भी लंबे विशेष टूथब्रश का उपयोग करके दरियाई घोड़े के दांत साफ करना शुरू किया। जब दरियाई घोड़े का मुंह खुला और उसके दांत साफ किए गए तो बच्चे हैरानी से देखते रहे।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।